रखवाला कर कृपा अपनी कर राखी मात पिता ज्यों पाला रहाऊ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी चौथ महला पंजवां गुरपुरै चरणी लाया हर

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा।

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चढ़ के पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हौ हौ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अव कद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभु स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां तूड़ी।

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुरे अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडियाई।

मत आया ता सगले दुख मिटाया चोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संता देव है हर गोविंद प्रभ राखिया गन नानक साच सुभाखिया।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाऊ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

वारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवा।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किस पाईए कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रावर।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो शिवर तिसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

कै पाणै दास बाणी ब्रह्म बखाणै नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

जिन सगले रोग मिटाए, सोठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकी सरनी पाई है, दर्शन भेट तो होते आनंदा, दुख गया हर गाई है, हर रस पीवो हो पाई, नाम जप हो, नामो अराध हो, गुरपूरे की सरनाई रहाओ, तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन पाई,

दुख भंजन आपे सब बिद थाटी हिन मह राख लियो जन अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया।

पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सोठ महला नवा मन रे कौन कमात तै लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तैं खोजत उदयाना बहुत जन्म परमत तैं हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज ना।

उदरी ता को जस पुर धारु रहाउ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

तिमर मोह मन रहो पुरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निस्बासुर नह छूटी अधमाई।

सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना हुई रहाव। दारा मीत पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे, जब ही निर्तन देखियो नरको संग शाड सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को, इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन। जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो। नाम तहारो लीनो सोठ महला नौ मन रे गहो।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार तीन पवन पत नाम मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मन मुख झूठ लह पैमान।

गंभीरा बिन शब्द है जग बोहरान पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मान सोठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंधनी पाई कर्म धर्म बंधकारी पाप पुन जग जाया पाई बिन सह नाम वसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे बेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजै पाई सो आत्म तत बिचारी रहाओ सास्त बेर बकै खड़ो पाई कर्म करहु संसारी पाखंड मैल ना चूकई पाई अंतर मैल विकारी इन बिद डूबी माकुरी पाई ऊंडी सिर कै पारी दुर्मत घनी विगूती पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई बिन नामे परम ना जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुर ते उपजै पाई मन निर्मल साच समाई गुर सेवे सो बूजै पाई गुर बिन मग ना पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही वलोई पाई विचो निकलै तत्थ जल मथिए जल देखिए पाई एहो जग एहा वत गुर बिन परम बगूचिए पाई घट घट देओ अलख एहो जग तागो सूत को पाई दह दिस बांधो माए बिन गुर गाथ ना छूटई पाई हाके कर्म कमाए एहो जग परम पलाया पाई कहना किशु ना जाए गुर मिले पौ मन वसै पाई पै वरना सच लेख मजन दान चंगियाईया पाई दरगहा नाम वसेख गुरे अंकस जिन नाम दिरड़ाया पाई मन वसया चूका पेख एहो तन हाट सराप को पाई वखर नाम अपार एहो वखर वपारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार धन वपारी नानका पाई मेल करे वपार सोच

प्यारे अमृत रसन हरे। बूढ़े भारे पै बिना प्यारे तारे नदर करे। पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया प्यार।

हर जियो हर नाखश मार पचाया गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो मन मुख परम पलाया।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेजियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी।

पांचवां कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पालदा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होए नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होए प्रगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ पाई सर्ब कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होए परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई

जिस प्रतीत न आवे भाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुण यारे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाम। जिस गुर साचा पेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

करना करना हार प्यारी अंतर जामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारी जो साची सरन।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंड होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दी।

ओरठ सदा सुहावनी, जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन, जीबे सच्चा सोए ससुरे पेये पैवसी, सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले, खुशी रावे फिर संग सदा शिंगारी नाउ मन कदे।

कर्म मणि सब सच महला चौथा सूरठ ताम सुहावणि जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जनहारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सुवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर।

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना, ये गुरमुख मिल है सुपाय, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाय। दूजे पाए लगे सजन ना आखिय है, जे अभमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है। फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने, सदा सदा कुमाया।

जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया। तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम फलाया। अमृत ताज बिक संग्रह, करत आप खवाया। गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन सीतल होया,

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाइंदा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेव है अपना हौ तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाद लगाए एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए भेख धारी भेख कर थके अखत तीरथ नहाए मन की सार ना जाननी हौ मैं परम पलाए गुर प्रसादी भव पया बड़ भाग वस्या मन आए पै पय मन वस हुआ हौ मैं शब्द जलाए सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से बत्ते दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाए सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड़ गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ति है पाईऐ मोख द्वार इहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार ए मदावणी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखीऐ उर धार ए मदावणी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई। पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारिया हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया जिन्नी सुन मन्या हर नाम तिना हों वारिया गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया हों बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया। श्लोक महला तीजा। बिन नाम है सब परम दे नित जग तोटा सहसार मनमुख कर्म कमावनी हूं मैं अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन दिन उस्तत होवे मनमुख परमे सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ। पौड़ी। से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाए बिन डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए नानक शब्द पछाणी है नाम वसै मन आए। महला तीजा। इक्का बाणी इक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावे जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगे तै पौ सब किश जाने जान आसा मन सा जलाए तू होए रहो मेहमान सतगुर कै पाण पी चलह ता दरगाह पावे मान नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट ना आवई हीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझै बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझै इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भौ करे।

लायू अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजै पाए बरकत ना हो।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मेता किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चा शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार नानक।

नानक गुरमुख मिला है वढ़ियाईयां, जे आपे मेल मलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी। जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साद सा त्रिपतावनी। गुण गावे प्यारे नित, गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे। यों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है, जां आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना, दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित, तिन्ना भाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार, गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सत

पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मै वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चित एक अरादिया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कु महल ना जा

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखां कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दी तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाई सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाई नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

ना हर मरै ना कदे दुख लागै, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हित प्यार पौड़ी। जिन्ना गुरु गोपिया अपना, ते नर गुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करहु, पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरहै कसुध मन, ज्यों तरखट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मेलो हो सतगुरु दया कर।

यह नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुरु पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आगे भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बद्दा थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला ता की रजाए लिखिया पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए निपड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नाक नाथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्ला आप हाट बहालियोन आपे रचन रचाए आपे ही काल्योन आपे जनते उपाए आप प्रतपाल्योन दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्योन नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जाल्योन सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाय आपे बख्श कर।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूतपूर्व।

तेरा। चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ, कबत पड़े पड़ कबता मुए, कपड़ किदा रह जाई, जटा तार तार जोगी मुए, तेरी गत इन्ह ना पाई। दर्ब संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी, बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

परत है या तन की यह बडाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहरी लौ बरी नार संग पई आगे सजन सुहेला मरखट लो सब लोग कटंब भयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नरनी भ्रम सुआ वेद प्राण सबै मत सुनकै करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियानी उठ पंडित पै चले निरासा मन रे सरयो ना एकै काजा भजियो ना रग

जाई हमरा भरम गया पहो भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजी गर डंक बजाई।

आई, सब कथ कथ रही लुकाई, जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहे आसमाई, गुर किंचत कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी, कह

गुरु राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहा बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

तौ जन तीर्ज पावा नाद समाय लोरे सतगुरु भेट ले देवा रहाउ जह चिल मिल कारज संता तह अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह दीप

लंक पपीखण आप्यो हो सोरठ घर तीजा अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिक राजे इंद्र समसर ग्रह आसन।

पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रवदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत पुन बड़े भाग लिव लागी कह रवदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पए है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

वेदन उपज खरी पई वाकायव खद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन।

जाना। जे साथ रखिए बीजर लाए, जा परखिए खोटा हुए जाए। जैसा करे सो तैसा पावे।

जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाच कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाज

हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखुट नान फुटै ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए गुर कृपा ते हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन परगासिया।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मल धोए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, किस सदा हरख नाही कदे सोग। आप मुकत अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे हर ते सुख पावे। बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले। जी जंत जिन्हें प्रतपाले,

पाए, मूलों भुला जन्म गवाए। गुरते शांत सहज सुख माणी, सेवा साची नाम समाणी। शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए, साच

जन निर्मल होए, अंतर नाम बसै पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

सत तृष्णा यज्ञ बुझाए अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणे चले ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैं गिल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन ले

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमती पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर पेते पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। तना श्री महला ती

लाय गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख।

कृपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

नित कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारे गात्मित कह ना सक है प्रभ, हम क्यों कर मिल है अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब किल विख पाप ले जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी टूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाती भूख पुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासरी महल

अपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई भल मानु हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई।

समझ पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पाव है फिर जन्म ना आव है हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ।

कर दीजै। नानक हर सिमरन का है चाव, तना श्री महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आवे है, सब गावे है हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

प्यारे, सब तुझ त्यावह मेरे साह, ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवा, घर पहला चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वचल निरंकारी, कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन बासन दे कर गढ़हा गाडी रहाव। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर,

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई प्राप्त वस्ते।

सुख सुभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कीओ बंधानी तनासरी महला पंजवां वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धव भस्म संगीत अमृत संग न

केले वेख दुख भागे गुरु ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै

ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाटे तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु, हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावहु, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले।

निर्मोल का हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा।

आन संयम किछ ना सूझै, ए जतन काट कल काल रहाओ, आद अंत दयाल पूरन

कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाइए साध संगत दिन सजाए अंधार चरण कमल आधार।

पधारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

प्रभु वह एकत्र तह हर जस गा वह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह हर।

नासन पाजन थाके, घर मंगल वाजह नित वाजे, अपने खसमन वाजे, अस्तर रहो हो, डोलो हो मत कबहु, गुर कै बचन आधार, जय जयकार सगल भूमंडल।

आई धनासरी महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त ना काहू जियो रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा एहो उपदेश मोको गुर दीना जियो इस स्यो ना ला

अराद हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन खापियो हर जापना निमुख जापियो हरफ द्रब देख कश संग नाही चलना जा को रे कर्म भला तिने ओट गही संत पला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाली। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोबिंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई, संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, ताका जुग मह धर्मा।

पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परो रवाल रास।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्ब सुख भोग रस देवे।

मिलै नानक संत सेवा तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने होए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात सत

यो प्रभ अपने भगतन की राखी पात, नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हरना लोभ झूठ निंद, इव ही करत गुदारी, मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, एह टेक मन है साधारी, साकत की आवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी रहाऊ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, एह बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, शीतल तन मन शाती, रूप रंग सुख तन जी का, पार ब्रह्म मोरे जाति। रसना राम रसायन माती, रंग रंगी राम अपने कै, चरण कमल निध थाती रहा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख

काल सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। धनासरी महला पंजवा घर नौवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोविंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाउ काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। धनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरन समरथ अकाथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सरभत पूर्ण ठाकुर मेरा। धनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। धनासरी महला पंजवां तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तने अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। धनासरी महला पंजवां गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी। धनासरी महला पंजवां।

तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई बाहर भीतरे को जानो एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीनै मिटै ना भ्रम की काई तनासरी महला नौवां साधो एहो जग भरम भलाना राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाउ मात पिता भाई सुत बनता तां कै रस लपटाना जोगन धन प्रभता कै मद में अहनस रह दीवाना दीन दयाल सदा दुख भंजन तां स्यो मन ना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नौवां तेह जोगी को जुगत ना जानो लोभ मोह माया ममता फुन जेह घट माहे पछानो रहाउ पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन लो समानो हरख सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिस को तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक एह बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो तनासरी महला नौवां अब मैं कौन उपाउ करूं जेह बिद मन को संसा चूकै पौ निध पार परो रहाउ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच धरू गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पास ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरत पछानो तब हो पतत तरो तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाउ रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पय निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आमन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर कथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रे भवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बीचारी भगत वचल पै काटन हारे हौ मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तना

दास मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन

ना बहु भेख है कड़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पहु भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बन वासा परमत डोलत भये उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आद जगाद सहज मन धीर पल पंकज महकोट उधारी

पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाइए रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखे जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे।

लेखै आपे सुरत बुझाय नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह बाद वदंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा भगत सोह है दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसे है पारस होए जां तेरे मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आत क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

निवारी तनासरी संत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राते अवगुण बह बह रोसी तन जोबन आक की छाया गिरध भय दिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी घर गालियो गुर कै भाए चलो साचा नाम त्याए पावह सुख महलो हर नाम त्याए तां सुख पाए पे अड़े दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अन बिन नाल प्यारे बिन भगती घर वासना होवी सुने हो लोक सबाए नानक सरसी तां फिर पाए राती साचै नाए फिर तन भावे तां फिर भावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेते लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण फिर सिंह प्रीत प्यारी फिर कर सोहै नार जे फिर भावे जियो झूठै वैण चवी।

हो पूरे सतगुरै जियो हौ तिस सेवी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो कदे ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बड़भाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले वडभाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया हों मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोरिया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गा

साध संग राह जीओ, पज संग साधु एक अरादु, जन्म मरण दुख नासे, तुर कर्म लिखिया साच सिखिया, कट्टी जम की फासे, पै परम नाठे छुट्टी गाठे, जम पंथ मूल ना आवी है, बिनवंत नानक।

तातार सर्व दुख पंजनो जीओ दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा धारिया जियो मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्स अपार नाम अमोले जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोले जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाउ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो हो कवन बिद कीजे सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो हो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु

सरना जो जन भाव भगत कश जानै ताको अचरज काहू ज्यों जल जल मह पैस नानक सह त्यों ढुर मिलो जलाहु हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा रमैये कहानी हो रहाउ कहत कबीर सुनो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक कह जैबू पूछे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगो किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाउ सोभा राज विभै बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तार मूंड बलाई हमरु करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा स्यों करत ठगाओ।

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है सीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइय, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइय, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बाला।

ज्यों धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यों कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी ढेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सनागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ पपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाऊ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाऊ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाउ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

हीरा लाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका काखा, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकानो लाखा, मेरा मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन घर रतन ना लाखा, ते उजड़ भरम मोए गावारी, माया पुआंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जन नीके,

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ तन तन बड़ भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत

साकत बंद भय है माया, बिख संचय है लाए ज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह है सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत उमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम।

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मद सूदन, मिल सत

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बजहियो, सर्ब निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महल्ला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड दाता, मने गिहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महल्ला पंजवां, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण पर्यो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो

जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रस में है मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारु हर प्रेम।

चरण कमल नानक आराध्य तिस बिन आन ना केह। जय श्री महला पंजवां। मन तन बस रहे मेरे प्राण, कर कृपा साधु।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

को त्रास भयो उरे अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना करीजै।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा।

आई महामंगल रहस थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महल।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत ना

मन बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, पर मह जोन असंक मर जन्म है आवही। पशु पंखी सैल तरवर,

गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है, किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए, प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही, जो बन गया बेतीत, जार मल बैठिया, कर कंपत है सिर डोल, नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण, नह निमख मन मह वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर, बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए, अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया।

तथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों वसारियो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निमिया अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिखम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन कल कलिश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग ऐस्यो लाई है ने हो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर प

साक्षात हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान परमिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

ध्रुवो पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई

सलोक बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नाम सरवण सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पा।

पिरहड़ी साच सिंह पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग पूर्ण है।

कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई। वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

कहिय है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज।

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां, कृपा निद बसो हृदय हरनीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाऊ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अब

पंजवां सतगुरे आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूझ।

पावह सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूटह पवजल जगत तरायण खोजत खोजत।

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किस नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा।

सरन परे दुख पंजन जाका बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमोह को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नीमा हर हर त्याई।

सब किस किस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुख दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीह ना होए रहाओ, हौ टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्हू, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैण अलोए, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहिलड़ो मूडड़ो ही ओरे, हियो महाराज री मायो, दीहर न्याई मोहे फाके ओरे रहाओ, कणो कणो कणो सद लोड़ै, बिन लहने कैठे पायो रे, महाराज रोगाथ बाहु स्यो लुबड़ियो, निह भागड़ो पाहे संजोयो रे, सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे, जाको लहनो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे, टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग, एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखियाते,

राम नाम निर्मल है रीत रहाऊ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तोसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निमकहि रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतरयामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे।

हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर।

रंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजेउ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म भय

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अवनासी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काढ लियो जाने अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक शरण गही।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी। सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी। गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी। टूडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं इस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

हरि आपी पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत छिडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहु नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किसकी।

प्रसाद याक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाई नानक तिन दर भीख्या पाई तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लब रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों तन

यह जो किस करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए, जां कै प्रेम पदार्थ पाइए, तौ चरणी चेत लाइए, सहु कहे सो कीजे, तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए, एव कहे सुहागनी पैणे, इन्हीं बातें सहु पाइए।

तू है, तू हो मनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिसकै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत

घर तीजा करते कुदरते मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ खिन माहि थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जान देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाऊ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

आपे हार एक रंग है, आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका। साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चेतना है तू चेत लै, निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है। फूटे घट ज्यो पानी रहाओ, हर गुण काहे ना गावे ही मूर्ख अज्ञाना।

ए भजन ते निरभय पद पावे तलंग महला नौ जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद भेड़।

लिखिया अमृत हर का नाऊ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना पीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुटै ता कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई ताई उसारी साज जाने सब सोई नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सोई महला पहला पांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हचे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाऊ आप वरताए सी चलिया पत स्यो जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुनाए।

भोगवै भोगी होवै खाए तपिया होवै तप करी तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगै पुछ न होवै जे सण निशाने जाए तैसो जैसा काढ़िऐ जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए एहो तन वेची बै करी जे को लए विकाए नानक कम ना आवई जित तन नाही सच्चा नाम सूही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंसा जोग ना डंडै जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुंडी मूंड मडाया जोग ना सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर समसर जान।

जोगनाथ ये सिद्ध संतर भवे है, जोगनाथ तीर्थ नहाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै, धावत वर्ज रहाई है, निचार चरै सहज धुन लागै, घर ही परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, नानक जीवत आमर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाज हो सिंगी वाजे, तो निरभउ पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सूही महला पहला, कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराप भला।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई, हौ हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जेसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे पाई, तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौ मैं करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोड़े, हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा, तिनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया।

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाई है परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम।

त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है। क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझे। जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है। बुरा भला तुद सब किस सूझे। तुद भावे तिवें बला वह रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देवह एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते। तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करह तेहा को हुआ। बिन नदरी नाही को भेख तेरी वड्याई तू है जान है। सब तुदनो नित त्याई जिस

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग भये गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हऊ मैं रोग गए रहाऊ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हऊ मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हऊ मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारू

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै। हर की वडिआई हौ आख ना साका, हौ

मैं मालत हुई कहो नानक मेरी परम गत हुई सूही महला पंजवां कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारे कछु ना पाइए साच लगे ता हूं मैं जाइए जिसनो लाए ले सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आण है रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभ सदा त्याई सूही महला पंजवां तन सुहागन जो प्रभु

आवे, सास भागणी अंक समावे, गर्भ गिहिली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रहण बिहावे, कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अब नासी।

पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत श्रृंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया।

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो तीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता, धन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो धन मतवंता, धन जागै जे पिर बोलंता, पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले जागे, खिन रहन ना पावो बिन पग पागे, हुए कृपाल प्रभ मिलह सुभागे, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर भरम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

क्या कह रिझावू, बिद कित पावू दरसारी, मित नहीं पाई है अंत ना लही है, मन तर सहचर नारी, पावू दान टीठ हुए मांगो, मुख लागे संतरे नारी, जन नानक को गुर कृपा तारी, प्रभ हाथ दे निस्तारी।

ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बैठा।

करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब धंधे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किस पाईऐ जो

मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुई महला पंजवा, दर्शन

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वस है मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंधप पाई। जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम। सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह। कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे। काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी। सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवा। गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल।

सुख माना, नानक दीवन हार सुजाना, सुई महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंद है नित पारच, माधवे पाज दिन नित रहनी, जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ, करत विकार दू कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत, परन पोखन संग औद बेहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाए कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताए नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाए सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा पाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

सुखी ताकै पाछै जाऊं। छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया।

दुबदा की कुरिया रहाउ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिर।

करनी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाऊ, महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध को पाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा कर छीवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेन।

अपार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौं सो थान पालने आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाऊ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरह बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित छूटे संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल में है मैल प्रिये। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे उदरै सो कल में है।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हाथ

एक परवासा तुम्हारा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां।

चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

भौ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे रहाउ जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई

अमृत पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया। भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावै प्यारा तैरै वेसी। सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबर बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

देही होवग खाक पमन उड़ाई एहो कित्ते घर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कप महाई है गर्भ मुसे घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार एहन सत्याई है जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही

गया। आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया, देही पसमर लाए ना जापी कह गया। आपे रहा समाए सो विस्माद भया, तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है। गुरमुख

आस सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाय, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मन लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा, दुर्म

याची तृष्णा यज्ञ बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहिया समाय। हर का नाम सत कर जाने गुर कै भाई

तन मन सौंपी आगे धरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहिरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल विण नावै नाल ना चल सी।

फुट है गुरमुख निभ नाल ये मन मूलों भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच त्याय हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रप

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे

तुझह अराधी दुख पी तुझह त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अरती विच

सुत्या गुर सलाहिया उठदिया पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ताके धुआ पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलया हर पाया मिलया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कित उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी।

मन्योहो आप बदानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किले विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम

मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्या, सुख न पायन मूल नाम विशुन्या, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बिचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाही अनेक मर मर जन्मती।

जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देहु गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया

मलाए जियो सोई दस पदेसड़ा मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो एहो मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बताए।

प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सुहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आई घर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जहां रावी रंग रात अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारी वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाईए नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईए फिर उचड़िए माडड़िए तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनासी।

ता गुण रवै मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच पावै साच की मत क्यों टलै इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छलै परपंच मोह बेकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया माथे अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहिब सो सलाही है जिन जगते पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेख तिसे पाना पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो धंधली बिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंथड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

आप अपुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल्ले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहिलड़ा हर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो, हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विट्टो हो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोहिलड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा, राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए।

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रब रहिया सब थाई राम, प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करते नाम नवें निध पाई।

गुर का शब्द वसिया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर किरपा घर आई भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर

जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाई संत संगत सिउ मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया

सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम, हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सत संजम सदा है निर्मल, गुर कै शब्द शिंगारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, जिने आपे आप उपाया। नानक सदा पिर रावे अपना, जिन गुर चरणी चित लाया। फिर पायड़ा बालड़िए अनदिन सहजे माती राम, गुरमती मन आनंद भया। तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती। मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना। विचो हो आप गुआए गुरमत पाया सहज मलाया। अपने प्रीतम राती

हर मन तनु गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ, नानक कृपा तारे सोहे लड़ा हर राम नाम, गुर शब्दी विचारे हम नीवी प्रभ अत ऊचा, क्यों कर मिलिया जाए राम, गुर मेली बहु कृपा तारी, हर कै शब्द सुपाए राम, मिल शब्द सुपाए आप गवाए, रंग स्यों रलिया माणी, सेज सुखाली जा प्रभ पाया, हर हर नाम सुमाणी, नानक सुहागन सावड भागी,

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना।

हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की। हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए। निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी। गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती। नानक हर मीठ लगाए गुर सेवन सतगुर दाता। हर हर नाम समाए राग सूही महला चौथा। शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पुरख मलाए अवगण विकना गुण रवा बलराम जियो। हर हर नाम त्याए

परम गत पाई, पंच मेले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया, उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुपाए, आया लगन गणाए हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई जब साजन सुने घर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई,

भेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, भय पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निस्तारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया। व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

संत जन हो, गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे, तू करता सब थाई ऐनस जपी सदा सालाही। साच शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह रंग राता। राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण, अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रवया सोई। गुरमत सच पाईए सहज समाईए, तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा, आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै, अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई, बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै चोटा खावै, अंत गया पछताया। बिन नावै को बेली नाही, पुत कटंब सुत पाई।

अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनती रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाईऐ भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भगत।

गर्भ गवानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक शरण पया हर।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरण सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम

न जाही लखणी नानक तिसह त्याय राग सूही संत महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आनंदिन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सुवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागै बिनवंत नानक।

मूर्ख नासे, रहस उपजै मन घणा, मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुख भणा, होए रेण साधु प्रभ अराधु, अपने प्रभ पावा, बिनवंत नानक दया धारहु, सदा हर गुण गावा, गुर मिल सागर तरिया, हर चरण जपत निस्तरिया, हर चरण त्याए सब फल पाए, मिटे आमन जाना, पाए भगत सुपाए हर जप, अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई, बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई, पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा, गुर संत पाया प्रभ त्याया, सगल इच्छा पुनिया, हौ ताप बिन से सदा सरसे, प्रभ मिले चिरी वछुनिया, मन शांत आई वजी वधाई, मनो कदे ना विसरै, बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया, सदा भज जगदीसरै, राग सूही संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक था

बन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन

पूरा तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता पाई सुत बंदप जी प्राण मन पाना राम। जियो पिंड सब तिस का दिया सर्ब गुणा पर पूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे। ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण। सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना। ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाइय प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है। गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सो

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

तेरे प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपूर।

तेरा कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी करोड़।

अंदर साजिया संत भगत गुण गावह राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावह राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अति मीठी कथी अकथ कहानी।

जिन तारिया सूही महला पंजवा तै सागरो भै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोहि थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिया बहुड़ ना मरिये चूके आवन जाना जो किश करे सोई भल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरनी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगे धरिया सरबस ठाकुर दीने राम करे अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अनद बनोद सिमरो प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई सावड भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने अनद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर धारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अरादह कटिए जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारी सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अराद है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे है तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाई है जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस पर

काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अठ सत तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता।

ज्ञान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

प्राण आधार गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जीओ तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधु वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उर धार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सूहविये निमाणिये सो सहो सदा संभाल नानक जन्म सवार है अपना कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहे दा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला सलोक महला तीजा सूहब तां सुहागणी जा मन लै है सच नाऊ

लाल हुआ रसनारती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मढ़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन।

0: नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन की ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझ सी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालिया सोपेदा सेवन

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा, काग उडावत कुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी, सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया, रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया।

हो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया इन्हो लिया उभारी रहाओ नौ डांडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़ जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच मैं रहो रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी।

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै तारिया, अवर न सूजै गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, खिन सत गुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरे हो मरूं दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिउ, जित हुण खसम ना

आचार अन दिन आनंद हुए मन मेरा गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को समसर वेख बहुड़ ना मरे ना जम पेख कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग में बड़े आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

तोहि, कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हमे पचे दीपक देख पतंगा। सगल श्रृंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पर्दा देख भई निहाल। जिन चा

पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

जाए पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधिय निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूके जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवां विखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संता संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याइए। दृष्ट धार मन बेदया प्यारे रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बलावल महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक रूप सगल उपा सारा आपे बंज आप ब्योहारा। ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए तत।

आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता बलावल महला पंजवा आप उपावने आप सधरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विभव आप ही जरना रहाऊ आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही अशालना जाई चलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बलावल महला पंजवा भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारी बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अग्न सागर बूढ़त संसारा नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा बलावल महला पंजवा तन मन तन अर्पौ सबे अपना कमन सो मत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेखत सोभा मेरे आंगन रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों साध संग इस मन है उदारों मत बुद्ध सुत नाही चतराई ता मिलिए जा लई मलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ न माया साध संग सब दुख मिटाया।

गुर पूरा वडभागी पाई मिल साधु हर नाम ते आई पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना किलविख काटे पज गुर के चरना रहाउ अवर कर्म सब लोका चार मिल साधु संग हुए उधार सिमरत शास्त्र वेद बिचारी जपिए नाम जित पार उतारी जन नानक को प्रभ कृपा करिए साधु तूर मिले निस्तरिए बिलावल महला पंजवा गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया। बलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित त्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाउ। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाउ। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पैज सुवारी। बलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरो साधु सांगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बलावल महला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुरे आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाउ। वण तेण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुरे आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवां मन मैं सिंचहो हर हर नाम अनदिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम हृद माही त्याई नानक गुरपुरे।

मारै करतार। नानक दास तां की सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवां, ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाउ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावो नित राम के, एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवां, काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊट सधारे शतरपथ, संतन कै ख्याल रहाउ। अहम बुद्ध को बिनसना, एह तुर की ताल। बहु जोनी जन्मह मरह, बिख्या बिकराल। सत वचन साधु कह, नित जपह गोपाल। सिमर सिमर नानक तरी, हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवां, सहज समाध आनंद सुख। पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ। अमृत गुण चीन रहाउ। जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया, नानक गुर पास। राग बिलावल महला पंजवां, घर पंजवां चौपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यों बालू घर बार, बिन सतबार ना लाग गई। ज्यों कागद बुंदार, सुन मेरी मनसा मनै माहे। सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी। ताज गए घर बार रहाउ। जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लगह गावार। कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बिलावल महला पंजवां, लोकन कियां वडियाईयां। बैसंतर पागों, ज्यो मिले प्यारा अपना। ते बोल करागो, जो प्रभ जियो दयाल हुए। तो भगती लागो, लपट रहो मन बासना। गुर मिल एह त्यागो रहाउ। करो बेनती अत घणी, एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया, निसबासुर जागो। सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो। कहो नानक तिन पाया, तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवां, लाल रंग तिस को लगा। जिसके वड भागा, मैला कदे न होवई। नह लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाईया। मिलिया सुख पाए, सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर, लेहो मुगद उधारे। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा अवर नहीं चारा। ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे, बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अपागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बलावल महला पंजवा, हम बुध प्रबाद नीत लोग रसना साध, लपट कपट ग्रह बेदया मिथ्या बिख्याद। ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद, राज मिलख धन जोगना नामे बिन बाद। रहाउ रूप धूप सुगंधता कापर पोगहाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानुख भया खिन भंगन देहाद, एह अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बलावल महला पंजवा, चरण पए संत बोहिथा तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान मह गुर दसे भेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत,
ऊठत बैठत सोवते हर हर हर चेत रहाउ। पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत, पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सूबा सेत। निश्चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना एतो बिरथारी, मिलत संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी। रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी, सगल रेन इह मन भया बिनसी अपतारी। निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दूदारी। तन मन शीतल पए अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की पग चा

तुम मिलहु दयाल निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभु संतन पागराल उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल।

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करना हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसर सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

ना जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय परमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारी नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए रहाउ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जां कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाउ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत, तिस स्यो तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन सरनागति, जिन मन वस कीना। तन तन सरबस अपना, प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया, सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत, हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराध ते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते, नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन, जह जपिय नाम। कथा कीर्तन हर अत कन।

जागण ते सुपना भला बसिया प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप नारेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करया हर आप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

तै राखिया अपनी करमया रहाऊ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे तां का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ तां की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल।

आद समाग्य उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भाग्य राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै तंत मंत नह जो हुई।

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पही प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन पा

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

मन पूर रही दिन अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रत्न रत्ना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाती।

घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पए उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम न आवत हे जां सियो राच माच तुम लागे ओहो मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो।

ऐठह ठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाऊ सहज समायो गुरह बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बिलावल।

सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक कौ बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरै मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाओ, अन बोले को तुही पछान है। जो जीन मह होता, रे मन काए कहां लो डह कहे। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भये मन आनंद। आन ना बियो करता, कहो नानक गुर भये।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरिय, निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आ

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग।

परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभु होत दयारा, गुर भेटै काढ़े बाहां परे। बिलावल महला पंजवां, मन तन रसना हर कीना, पए आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाओ, ज्ञान पते सब पई सियाना।

फल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि

जरा मरा कछु दुख न व्यापै, आगै दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइयै एहो निदान। जन्म मरण की कटियै फांसी, साची

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंद प्रवेशा त्रिशन बुझे मन पन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुवै थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु धूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहिया परपूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास

ऐसी माधो खिंचतनी दिन सरैन मन माहि बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को कथ कर।

का कौ धराऊ का स्यो बल बंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा, साध मूत गुर भेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बलावल महला पंजवा। तुम समरथा कारण करन, ताकन तात गोबिंद गुर मेरे, मोहे अपराती सरन चरन रहाओ, जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो, ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन, बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो, कोट अगा तेरो नाम हरन, हमरो सहाओ सदा सद भूलन, तुमरो बिरद पतत उधरन, करना मैं कृपाल कृपा नित, जीवन पद नानक हर दर्शन। बलावल महला पंजवा। ऐसी कृपा मोहे करो, संतह चरण हमारो माथा, नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ, गुर को शब्द मेरे ही अरे बासे, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच नवार हो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो, जो तुम करो सोई पल मान, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संगले मोहे उदरो। बलावल महला पंजवा। ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो

जन चर रज मुख माथे लागी हासा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की तूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाहीं कोई पहुंच।

कुशल पया गुरपुर पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाओ मन तन रव रहे हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचर हर की जया बलावल महला पंजवा बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी शरण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवा दुपदे कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपह मेल लए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ ताज अभमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए कहो नानक गुरु पूरा भेट्यो आवन जान रहे बलावल महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो परसा

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस घूटी है।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानु, साच कहत मैं जाको। जैसे पाहन जल मैं राखे हो, पीदे नाही ते पानी। तैसे ही तुम ताहे पछानु, भगत हीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत, गुर यह भेद बतावे। कहो नानक सोई नर गरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। बलाव

भारत नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथ सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नाम भूले थाओ न कोई मन माया बंदेओ सर जाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो आंजै सो दिसै काल कारज सीधो हृदय संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई मनमुख हो मैं पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वडियाई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कशोत वेद पकारै भगत सरोत सुन सुन मन वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं गुरमुख शांत उत्तम करामं मनमुख जोनी दुख सहामं।

दूजा देख कहो पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे तन तन कलत सब देख अभमाना

आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चले पहनामी साचा नाम साचा शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभमाने गुरमुख नाम सदा सदा बखाने सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिले वड्डी वड्याई दुख काटे हिरदय नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करनी सार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार है साधार बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हों मेटे अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह ना सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ एक गिरहो दस द्वार है जाकी अहनस तस्कर पांच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जाव है मनमुख अंदले खबर ना पैया कंचन कोट बहु मानक भरिया जागे ज्ञान तत लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहिता खेवट शब्द गुर पार लंघैया जम जगाती नेड़ ना आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत ना लहिया गुरमुख मनुआ इकत घर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्स मन तृप्तै श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया राम नाम है ज्योत सबाई गुरमुख आपे लख लखैया नानक दीन दयाल पए है भगत पाए हर नाम समैया बलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावहो हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गसैया सरल परे से ही जानी उबरे ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ पार अठारह मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभमान विछड़ दूर गईया हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खलैया गुर चरणी एक शरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याए मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खिन खिन पल कहिए हर पार न पावे परे परैया शास्त वेद पुराण पकार है धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाभ भार बढ़ैया नाम जपहो नामे गत पावहो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया हउमै जाए ता निर्मल होवे गुरमुख परचै परम पद पैया एहो जग वर्ण रूप सब तेरा
जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह, जित पावै तित राहि चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सत पुरखैया। राम नाम मेरा प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया, जान की टेक हर नाम टिकैया।

धरती गुरमक माथ माथ तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम पर गासिया भांडै भाउ पवै तिथ अइया दासन दास दास होए रही है जो जन राम भगत निज पइया मन बुद्ध अर्प धरो गुर आगै गुर प्रसादी मैं कथ कथैया मन मुख माया मोहे व्यापे इहो मन तृष्णा जलत खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इहो मन नाचै सत गुर आगै अनाद शब्द धुन तूर बजैया हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर तार चोऐ अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हट कर्म करै अभमानी ज्यो बालक बालू कर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन भिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे इहो जग है।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाव। हम निरखत फिरौं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वच्छल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन

नानक हर गुर सरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हों खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे हों तिस विट हो बाल बाल घूम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जां सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मनमुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे।

पाइया। कर कर किरिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो भैया। बेसवा कह कर बेटा जन्मिया, पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया। भगत भगत करते हर पाया, जां हर हर हर हर नाम समैया। प्रभ आन आन मेहंदी पसाई, आपे कोल कोल अंग लैया।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊं सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन, चढ़ नाव संत उदार, पै तरे सागर पार, मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत, तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार, प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनंद पूर्ण साध, नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत, तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जमना पे कहनैन, सुन मोहे अनहत बैन, हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जाकी महा बिखड़ी कार, ताकी मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए, कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार, प्रभ करहो साधु तूर, नानक मन सापूर, बलाव महला पंजवा, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग, मन मिष्ट हर हर रंग, कर दया ले हो नर लाए, नानका नाम त्याई।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित नसंग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ। दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने। क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत आकाश किए बैसन कौ थाउ, रात दिनंत किए पौ पाउ। जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा। तृतीया

कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा।

मूक शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साध सच निह केवल कर्म अराद पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिबलाई प्रणवत नानक काल न खाए नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कबहै ना सूता, जागत जागर है लिवलाई, गुर परचै तिस काल ना खाई, अतीत भय मारे बहराई।

डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द बीचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

समाई, आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवै संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया काल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटिए सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै मस्त।

काई परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

माई नानक गुरमुख वेखै हदूर मेरा प्रभ सद रहिया भरपूर एक सेवक एक भरम पलाय आपे करे हरे आप।

पाई थिती वार सब आवह जाहि गुज शब्द निश्चल सदा सच समाहि थिती वार ता जा सच राती बिन नावे सब भरमह काची मन मुख मरह मर बिगति जाहे एक ना चेतह दूजा लुवाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपाय उपावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते भेख करह भेख धारी पाव पाव भ्रम है काची सारी ऐथ सुख न आगे होए मन मुख मुए अपना जन्म खोए।

मुग्ध गुआर, नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला, शंत दखनी

लिवलाए हर सिंह रही गोयल, सहज शब्द शिंगारिया, कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, मिलो साच प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया।

मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे पेख पवनी हाथ ना जाना नानका सच गह रहे पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम निज कर सूतड़िए इरम जगाए राम नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपत सुभाओ दूजा चातरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूजे ओ शब्द समाए आप गुआए त्रे पवन सोजी सूजे रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहिया सर्ब ठाई नानका उर तारिया महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मार रीजै शब्द सीजै त्रै लोक नाथ पछाणे मन दीक डोल ना।

प्रभ पाया रंग रलियां माणा राम वड भागियां सोहागनी हर मस्तक माणा राम हर प्रभ हर सोहा।

हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वडभाग गुर पूरै वेख लिया नाम।

हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम। अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुरत।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया नाम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

वस आओ सखी असि तिरका मंगल गावे है तज मान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तज मान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो हुए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण।

पियो सुख सागर प्रभ भेटे है नानक सुखी होत एहो जीओ संत सुख सागर प्रभ पाई है जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ स्यान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ।

हम श्री गोपाल ना उच्चरह बल गये दो चार नरस ना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रस ना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बस ना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हों मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिय हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोजो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

जप अनंत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम बड भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्हड़े अपने।

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बुलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरे हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरा।

पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुदे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिन्ह ते ब्राह्मणा जे चल सतगुर पाई।

चित लाई, हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाई, मनमुख ज्ञानी अंदले, जन्म मरह फिर आवे जाई, कार्य सिद्ध न होनी, अंत गया पछताई, जिस कर्म हो तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम ते

नगरी दुश्मन दूत सब मार कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान ना लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगै करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भनत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेवे हो हम मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजा।

हर नाम ना पाया बिरखा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुवार पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वे मुख

इस जुग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हम मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मन है समाणी, अंतर निर्मल नाउ। अन दिन जागे कदे ना सोवे, सहजे अमृत पियाउ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाउ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाउ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासो देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, तां कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुँह।

ना ही मारी ना मरै, ना ही हट बकाई, गुर कै शब्द पर जालीऐ, ता एह विचों जाई, तन मन होवै उजला, नाम

का अन्न, पांच चोर तिना घर मोहन, हम मैं अंदर सन्न, साकत मुठे दुरमती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख स्यो रचहर चन्न, दुष्टा से ती पिरहड़ी जान स्यो वाद करन, नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन, पै किरत कमाम दे जिव राख तिवै रहन, महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस, हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस, हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस, नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस, जिनको पूर्व लिखिया रास संत जना स्यो तिस पौड़ी, जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया, बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच पूर नानक बख्श मलायन सच्चा शब्द हदूर महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लई।

कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, भवजन निध भारी।

रह जाई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया, किस किया ना नीका, एहो जियरा निर्मूल को, कौडी लाग मीका, कहो कबीर मेरे मा

सुनो देरानी अचरज एक भयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां ले उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा रहा तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको त्रू प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्ह नवाज साज हम किए तिसे बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओहो सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत काल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस।

होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाऊ एक बूंद जल कारणी चातक दुख पावे।

आसा कर जगदीश गुसाई, जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै, सा निःफल आसो सब बिरथी जाई रहाउ। जो दिसै माया मोह कटंब सब, मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनकै किस हाथ नहीं, कहां करह एह बपड़े, इनका वाहया काश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छडाई। जे किस आस अवर करह परमित्री, मत तू जानह तेरे कितै काम आई। ए आस परमित्री भाव दूजा है, खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

केश किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरे अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, तां आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा। जित दिन उनका सुआओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरै दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश लै जप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइए, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइए, मेरे मन हर जप हर नित पड़इए, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़इए, रहाओ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइए, हर एक को बोले हर एक बुलावे, गुर पूरे हर एक दिखइए, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइए, निह कपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइए, जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा तिहइए, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़इए, गोंड महला चौथा, हर

राग गोंड महला पंजवां चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल तनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवां।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेत न रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा काय अंतर जामी कर कृपा

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुआ जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा कीत मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गुण महला पंजवा संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा किसका पतन होए जिस को राख सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्श।

साधु संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जाको राख रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कुनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां।

अमराव पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसै तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहु राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया अन दिन तापे जाही, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछै परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वा कै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाउ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरेत होई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोदे पांच पलीत है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जने ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग निकावन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बगते दूधा धारी गुप्ती खावे है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाऊ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मृगाय प्राण तजे वाको ध्यान ना जाय ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाओ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी।

काला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलप है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूतला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाओ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपत सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों भूत शीतला धावै खर बाहन उहशार उडावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

पीतल देखिया मूर्ख को समझाऊं दे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरभर होई घर की जोए गवाई थी।

निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोद साध बिचारिया कहुरव दास पापी नरक सदारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना अब ही कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नर हरी जीवन तलब नवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए अंतर सहसा बाहर माया नैनी लाग सबाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी कर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा भीतर रह निरासा तो नानक एक मिले इन बिद सागर तरिये जीवत्या इओ मरिये रहाओ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोड़ी मंगन कै ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखी चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाऊ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमुले ध्यान रूप हुए आसन पावे।

रास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचै शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइय एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यो संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी संस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाउ साच भेट बैसन कौ थाउ सत संतोख होवे अरदास तां सुन सत बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे ते त्याए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकिया गल्ला दरकिया बाता तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ किरपा तारी ता हो मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाउ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मलाया राम कली महला पहला साधन भोजन मांगत भागे खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज घर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाउ पंच बैल गडिया दे तारी राम कला निबह पत सारी घर टूटी गाडो सिर भार लकड़ी बिखर जरी मंज भार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बेयोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपै निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मह मुंदरा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सतजुग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सतजुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझै को बीचार जुग चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागै सो मुक्त होवै गुर बिन नाम ना पावै कोई रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जानन दूर गुरमुख

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन उले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जन नीके, भाग हीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाई, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है सेवड भागी, हृदय

जीवनदाते हर संत पगी ले पावे हों काटों काट बाद सिर राखों जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदिया ढिल ना लाइए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित नवाइए राम मोको हर जन कार लाइए हों पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाइए सतगुर जेवड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याइए सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाइए एक अपने सवाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाइए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाइए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइए राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग हैं गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है सेन कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर धारे जी दान गुर पूरै दिया हर अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारे हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर धारी जे वड भाग होवह ता जपिया हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन धारी नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला एक ओंकार।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोल हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निध पावहु, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहु गुरमुख लिव लावहु, आत्म चीनो पाई, निकट कर जान हो सदा प्रभ हाजिर,

हे बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का कहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

हीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए राम कली महला पंजवा कर कर ताल पखावज नैनु माथे बजहर बाबा करन हो मद बासुरी बाजे जिहवा तुने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घूंगर साजा राम को निरत कारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नर हर जान हदूरे हूंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल कर हो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सधाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया।

नाही, जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया।

ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किनै विरले दीठा रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भय निह काम तन मन सी तले अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जा।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर

अनक पाप ता के पानी हार जा को मया पई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखै कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

त्याग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान,

जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उदार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, इकत ठौर ओह कहीं ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु ना लह। इसे त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओह तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पित हर तन रास नरास एह पित काटी बंद हर सेवा लाई हर हर भगत राम गुण गाई बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे है हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ आए बने ओ पूर्वला भाग जन्म

ना किस सेवा ना किस काल, कर कृपा प्रभ कीनी दया, बूढ़त दुख मह काढ़ लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ।

हर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिसूडसाना। माया कारण सद ही झूरै मन मुख कबह न उस्तत करै। निरपो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करै गवार। सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह। मोह मगन लपट्यो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर। राम कली महला पंजवां

खोज हो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो हो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाले संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये न उतरे मैल, हों मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, तां का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम कली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुद बिन दूजा नाही ठाऊं रहाओ, जप जप

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ टोट ना आवे अंत

पूंजी, संतन हाथ राखी पूंजी, सुन संवाद गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख ना

संकरा नहीं जानह पेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सुमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिस की गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोए किसह अराध सदा सुख होए काहे भ्रम भ्रम है बेगानी नाम बिना किस काम ना आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाओ जो जो करे सोई मान ले हो बिन माने रल हो वह छे किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलख।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, इस बिन अवर न कोई, जनका राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जाका प्रताप, राम कली महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिदमाहे अराध।

चित लागा, तन तन संयोग सुभागा, संत की धूर लागी मेरे माथे, तिल विख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी, जन का सफल दर्श डी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी लई

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाऊ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रग

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उज्जल साचे दरबारी आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस त्यागे ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

तिन सह अभमान एक त्याई साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहिया गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई आवागौन मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मैं हुए निवास संत संगत मैं हुए उदार नानक भवजल उतरस पार राम कली महला पंजवां गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए।

अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कह सिमरै पावै पद निर्वाना भई दयाल कृपाल संत जानू।

सुबा सुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेह अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध कटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार। होऐ परवाना करै तिंगाना कल लखन विचार रहाउ। कितै देश न आया सुनिया तीर्थ पास न बैठा। दाता दान करे तह नाही महल।

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों।

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कतेब करान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जम डंड फूटै खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटै मेल मलाई, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, लिपत गुफा महर है निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए न

तत् परुता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर महल तीर्थ परमीजै।

ही दुख दीजै, बिन गुरु ज्ञान तृप्त नहीं कीजै। मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै। मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै। ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै। नानक नाम मिले कृपा प्रभ कीजै। राम कली महला पहला, अंतर उतपुज अवर ना कोई। जो कही ऐसो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई। उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर। जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल। जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान। नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा। शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा। कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरण लागत रहो स्वभाव। तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाउ। हौ मैं गर्भ जाई मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने। बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत विचार। राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावह बौरे। ज्यों जन्मे त्यों मरन भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै। नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया। कनक कामनी स्यों हेत वधाई है, की नाम वसार है परम गया रहाउ। जत सत संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया। पुन दान इशनान ना संजम, साध संगत बिन बात जया। लालच लागे नाम बसारे ओ, आवत जावत जन्म गया। जां जम धाई केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया। बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया। खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यों, मोह पाप मह गलत गया। हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया। करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया। सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया। जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया। अंतकाल किस साथ ना चालै, जो दिसै सब तिसह मया। आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया। देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपा।

काट काट कुंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई, राम कली महला पहला, आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया, तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी, संत हो रहाओ, ममता मार हूं मैं सुख है, तेरे पवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मन मह राख है, सतगुर शब्द विचारी, सिंही सुरत अनाह दवाजे, कट कट जोत तुम्हारी, परपंच बेन तही मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी, राव सस लोके इहो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी, शिव नगरी मह आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इहो मन राजा, पंच वसह विचारी, शब्द रवै आसन घर राजा, अदल करे गुणकारी, काल बकाल कहे कह बपरी,

योग जुगत एव पाए नगरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कटंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाई गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना

हर की पूजा दिलंब है संतोहो, कहना कछु ना जाई। संतोहो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतोहो, क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होए, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोक संतोहो, मनमुख थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतोहो, एह पूजा थाए पाई। प्रित पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। बिन नावे होर पूज ना होवी, परम कुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतोहो, राम नाम लिव लाई। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करह पर विद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख हो ऐसो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई। अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई। जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई। एह मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संगत में।

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौ जल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाई है शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारी हम मैं तृष्णा मारी

अहंकारी जिच्चर्यंतर सास तिच्चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम रारी। अन दिन जागत रह दिन राति अपने प्रिय प्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी। माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी। आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी। नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया। कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई। एक नाम वस्या घट अंतर।

जो किछ करना सो कर रहया, अवर ना करना जाई। आपे साजे सिरट अपाए, सिर सिर तंदै लाई। तिसह सरेवो तां सुख पावहु, सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाई, लख न लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे, तिसनो तिल ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे, कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। इक ना नाम हो आप पलाई, इक ना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा, करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, बिरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदै नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रहया विस्माज, मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

हर हर दर परिया, किन्हीं कहया मैं कुलह वडियाई, किन्हीं कहया बाहां बहु पाई, कोई कह मैं तनह पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा, किन्हीं कुंगर निर्तक राई, किन्हूं वर्त नेम माला पाई, किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया, किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाए, किन्हीं पेख बहु थाट बनाए, किन्हीं तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडत, को खाट कर्म सहत स्यों मंडत, कोई करे अचारस करनी, मोहे दीन हर हर हर सरनी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नाम इहु मानना प्रबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया, राम कली महला पंजवां, इस पानी ते जिन तू करिया, माती काले देहरा करिया, उक्त जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ मह जिन तू राखिया, राखन हार समार जना, सगले छोड़ बेचार मना, रहाओ जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बंता अरमीता, तिस ठाकुर को रख ले हो चीता, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकुर की रहो मन सरना, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अंतर खान ठहरावन को दिए, बसदा दियो बर्तन बलना, तिस ठाकुर के चित रख चरना, पेखन को नेतर सुनन को करना, हस्त कमावन

सिर धरिया अब तू सीज पावे नहीं सीजै कार्ज सबरै मन प्राप्त आईजै इहा उहा एकै ओही जत कत देखिए तत तत तोही तिस सेवत मन

कर मारे गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवा काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याय काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाए संत बिहावै कीर्तन गाए काहू बिहावै दिन रहन चालत काहू बिहावै सो पेड़ मालत काहू बिहावै बाल पढ़ावत संत बिहावै हर जस गावत काहू बिहावै नट नाटक निरते काहू बिहावै जिया एह हिरते काहू बिहावै राज मह डरते संत बिहावै हर जस करते काहू बिहावै मता मसूरत काहू बिहावै सेवा जरूरत काहू बिहावै सोदत जीवत संत बिहावै हर रस पीवत।

कोट जाने ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो, साच शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहुत

आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल

हर प्रेम भगत बने आई संतो हो, सतगुरु खेप निबाही संतो हो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो हो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

हर सिमरत तृप्त अगाई संतो हो। आत्म राम रविया सभ अंतर कत आवे कत जाई संतो हो। आद जुगादि है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो हो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो हो। मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो हो। राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ। अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी। ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगटी जोत तुम्हारी। तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जनारे नारी। राम कली महला।

जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पांच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कार अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

विचारिया। एक भरम भूले फिर दह देश, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो,

पाई हुक्म मन्नी हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम पलाया माया ता मोहनी तने कीती।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिने अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल नराली, चाला नराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिशना, बहुत नाही बोलना, थन्यो तिखी वालो निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग नराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज ना उपजै, विन सहजै सहसा ना जाय, नह जाय सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाय, सहसै जीव मलीन है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, इहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जूऐ हारिया। जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई। मनसा सच समाणी, जन्म

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सत

करह रसना कहया कछु ना जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख किसह बुझाई तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतिया रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

वरदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिभ लावे अपनी लिवे आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानक वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करतै खेल रचाया जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाए।

मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

माया तुद कर्मक माया ते कर्मक माया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर ने हालिया एहो विश संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावै। आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावै। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणै अपनै बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी। सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावै। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैनावै। सतगुरु परतख हुंदै बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुरह भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा।

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगानी सारंग पाने, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए,

पुकार। चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराध्य विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवर ना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनहु ना विसर, गुर चरण लागे दिन सभागे सर्ब गुण जगदीसर। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसह स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा पल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो। श्लोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रखको अंचल तांकै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ। संत सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, आनंद भया वडभागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्याव हो सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पाव हो। राम कली महला पंजवा रुति श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन भय हरन सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो, रुती महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उद्भाव सी नानक नाम आधार। संत सरण साजन परहु स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया
नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निचल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया भई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिति जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जाका वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साज नह जन्म जन्म के मीत चरनहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन भादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह सिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत।

नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमण राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बशोह जियो। श्लोक हर तन पाया सुहागिनी, डोलत नाही कीत, संत संजोगी नानका ग्रह प्रगति प्रभ मीत, नाद विनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बने, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माग फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रे पहुन भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री धर कंत जियो। श्लोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर, नानक तिन बलिहार ने हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, टिलना मन ते बिसरे, तज आप सरनी परे चरनी, सर्ब गुण जगदीसरे, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आदि को आदेश जियो, मिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग भई ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संक टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा नाम रतन जप सार लभ लोभ बुरा अहंकार।

प्राप्त हुए। गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिली है जान ले मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत, काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल, कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई, जिन कीती तिन कीमत पाई, और क्या कहिए किस कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया, खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया, अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया, गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास, गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय, गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थर चीत समाध सुगोनी, हर नाम चेत फिर पवह न जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी, घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे, केते मात पिता सुत धियां, केते

वार एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रब नाल दह दिस ढूंढ कर मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाई चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोई चित है एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाई मुक्त भया पत स्यो घर जाए सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना सीजै जोबन जरुआ सिर काल काया सीजै पई से बाल जापै आप प्रभु तिहु लोई जुग

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझे समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखे परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल।

आए ज्ञानो बोले आपे बूझे आपे समझे आपे सूझे गुर का कहया अंक समावे निर्मल सूचे साचो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची खोट गुर कहया साकार कमाव हो गुर की करनी काहे ताव हो नानक गुरमत साच समाव हो टूटे नेहो के बोले सही टूटे बाहां दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवे टूटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताई ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपने दीठी कंत सुजान दर राख्या गुरे आपने निरपहु नाम बखान ढूंगर वास तिखा कनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोए टंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार पारे तहते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनकै हौ बल जाऊं तिनकी धूड़ अकुली है।

पाया निर्मल नाम, जिन नाम दिया तिस सेव सा, तिस बलिहारे जाओ, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, ता तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

सह कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ। हाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे। ज्यों मछली फाथी जम जाल बिन गुर दाते मुक्त ना पाल। फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रह लिबलाए। इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराय। बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाय। बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बाले ने जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते। बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तै दे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। पन पन खड़िए कर कर भजे ताहे उसारे उसरे ताहे। सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है। परम भलाने भये देवाने बिन भागा क्या पाइए। गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए। हर गुण गाए सदा रंग राती बहुड़ न पछो ताइए। पब्बे पल है गुरमुख बूझे ता निज कर वासा पाइए। पब्बे भौजन मार्ग।

हर मोए माया किसै ना साथ, हंस चलै उठ डुम्मण माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहया अवगुण चलै नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवै नाल। मेरी मेरी कर मोए विण नावै दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण। नानक सच्चे नाम।

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द

राह गुरा पिहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय पावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाय रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो हो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूर्ख शब्द ना चीनै सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखियै चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै देऊ नानक संत मिले सच पाईऐ सहज पाई जस लेऊ क्या भविऐ सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोई रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारू, रोस न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइयै गुरद्वारू, इहो मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम अधारू, आपे मेल मलाए करता, लागै साच प्यारू, हाटी बाटी रह निराली, रूख बिरख उद्यानी, कांद मूल आहारू खाइयै, औदू बोलै ज्ञानी, तीरथ नहाइयै सुख फल पाइयै, मैल न लागै काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै, जोग जुगत बिद साई, हाटी बाटी नींद ना आवै, पर घर चेतना डुलाई, बिन नावै मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई, हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत् बिचारू, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेव हो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइयै पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइयै, नानक बोलै गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइयै, अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हौमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, हिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारै एक हरी, साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, इहो तत् बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिलै अंधेरा जाई, नानक हौं मैं मेक समाई, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंध, सहज गुफा कर जाणै साचा, नानक साचे भावै साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावहु पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, कित बिद आसा मनसा खाई,

यमनमताय अनहदराति मन लाया मनसाया सा शब्द जलाई गुरमुख ज्योत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तारनहार आज को कवन विचार कथियले सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरपहो घर जाइए सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइये गुर कै शब्द हउमे बिख मारे ता निज कर होवे वासो जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे नानक ताका दासु कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रह समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना कमाई क्यों तत्ते अवगत्ते पावे गुरमुख लगे प्यारू आपे सुरता आपे करता कहो।

वह गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियलि सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियलि कट कट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किश सूझे।

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावे, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटे गुर शब्दी, आपे परखे बख्श।

नानक साच रते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाइए अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यो घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रे भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिन को जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाई, बारह मह जोगी परमाई, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मुख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस पावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई।

आपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना बरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज पाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाई क्यों तत ना बूझे चोटा खाए जम दरबाते कोई न राखे बिन शब्द ना ही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मनमुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरे तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ता की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाय नानक पार परे सच पाय सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिये भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिये तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाय आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाय सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसे विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरिये इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू अंतर बा

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी एहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै एहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा एहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवै धावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख हो मैं विचों खोवै तव नानक सहज समावै एहो मन निश्चल हिरदय बसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाब पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै सच रपै रंग कबहू ना जावे जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठे रहता नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे न होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक गुरमुख।

देखै जिस वसिया मन माई महला तीजा। मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख खाए। दुख विच जम्मै दुख मरे हूं मैं करत विहाई। आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाई। जो देवै तिसे ना जानई दिते को लपटाई। नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाई। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मेले सोए। सुख है इहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जह देखा तह सोई। पौड़ी सच्चै तख्त रचाया वैसन को जाई। सब किसे आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप गुर शब्द त्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहाउ सलोक कबीर महती कर कै कालिया। आप पिसाए पिसाई तैं सह बात ना पुछिया कबहू ना लाई पाए। महला तीजा नानक महती कर कै रखिया सो सहो नदर करी। आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाई ले। यो पिरम प्याला खसम का जय पावै तैं दे। पौड़ी वेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाए समाई। आपे वेख विग सदा दूजा को नाही। ज्यो पावै त्यों रख तू गुर शब्द बुझाई। सबना तेरा जोर है ज्यो भावै तिवै चलाही। तुद जेवड़ मैं नाही को किस आख सुनाई। श्लोक महला तीजा परम भलाई सब जग फिरी। हावी होई भाल सो सहु शांत ना देवई। क्या चलै तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई है अंतर रखिए।

कोई राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए क्यों कर मृतक होए कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई महला तीजा जीव

लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार। भरम गया तां जागिया चूका अज्ञान अंधार।

उतरै कोई कड्डो एहो विचार। सतगुर मिले ता नाम दड़ाई सब किल वेख कटन हार। नाम जपे नामो आरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी। तुद जेवड़ दाता नाही किसे आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है। रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है। जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन। सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन। नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन। ओए पाणे चलने अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नजरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती। गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है इन वात सुपीती। नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही। गुर दीखिया घर देवन जाहि। स्त्री पुरख है खटिया भाव भावै आवो भावै जाओ। शास्त्र वेद न माने कोई आपो आपै पूजा होए। काजी होए कै बह न्याई फेरे तस्बी करे खुदाई। बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई। तुरक मंत्र कन हृदय समाहि। लोक महावह चाड़ी खाहि। चौंका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए। जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत। जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

चुकै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियाने होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाज हो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़ मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़ सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई श्लोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिर है ना सत मूंड मंडाई केसी ना सत पढ़िया देश फिर है ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशाव है दुख सह ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काहू चर है जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई जिसनो दे तिसे आए मिले नानक ताको मिले बढ़ाई जिस घट भीतर शब्द रवे सब घट मेरे हो सब ना अंदर जिसे खवाई तिस कौन कह जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन जिसे पलाई पंद सिर किसे दिखावे कौन महला पहला सो गिरही जो निग्रह करे जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टण में है भी क्या करे सो अवतूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

पौड़ी, हर मंदिर सोई आखी जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एत कमाण सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना। गुरमुख हो सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना। नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। आवन जानना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है। हर रब रहे आ सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे। गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया हुआ अहंकार गुआपै।

कौड़ी काया हंस तुर मेल करता लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रतना पर

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बनजारिया दुहा रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुली जै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जै तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जै।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोयन नाहे, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहे। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लई सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइयन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटिएसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग। नाउ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग, नानक

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा।

नानक जो मर जीव्या सहलाया या सुए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बफड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, श्लोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा। सरवर अंदर ही रा मोती, सो हंसा का खाना। बगला काग ना रही सरवर,

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजी रटिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल आऊं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

प्रभु सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवां भीड़ हो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै श्लोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जपदे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हो तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुर पूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवां तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरियां हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया श्लोक महला पंजवां हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ
वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम साध ही भोगे भोग महला पंजवां।

ब्राह्मणे तिचर रखण गांड जेत दिन किश ना हो वही तेत दिन बोलन गांद जी की सार ना जाननी मन मुखे ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई चिक्कड़ पत्थर बंद अंधे आप ना जाननी फक्कड़ पिटन तंद।

तहों लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सेती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराद मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवै चेता

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित सो परवान जन जिस तू आवह चित बहुता तिस धन जिस तू आवह चित सो वड परवारिया जिस तू आवह चित तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवां अंदरो अन्ना बारो अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वह चक्र बनाई।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसा विच बैठा बग ना बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार

का बगला मत हुआ मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवं पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे खाए खर्च रहे टूट न आवे सरवर हंस दूर न होई करते एवं पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिस का कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला। जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है। जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवा। ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे महला पंजवा। सतगुर सिमरो अपना, काट अवकट काट काट।

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नाइय।

होगा हरख आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवान।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाऊ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपुरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे नरक सुरगे अवतारी भाणे धरन परे। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणी। जिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तो सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पोलू है। हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो। जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारणो। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारणो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालणो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालणो। जिसनो एको रंग भगत सो जान।

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जा तिस पाविया।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद

जुगत साए सहकाया फेर पलटी है चुले सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूनी चटी है लंगर चले गुर शब्द हर टूट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरती है दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाइन सती है जिने आखी सोई करे

क्या करे, सा बात हुए दरहाली, गुरे अंगद दी दोही फिरी, सच करते बंद बहाली, नानक काया पलट कर, मल तख्त बैठा सह डाली, दर सेवे उम्मत खड़ी, मस कल्ले हुई जंगाली, दर दरवेश खसम दे, नाए सच्चे बाणी लाली, बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती छाओ पतराली, लंगर दौलत वंडी है, रास अमृत खीर क्याली, गुरसिखा के मुख उजले, मन मुख थीए पराली, पए कबूल खसम नाल, जा काल मरदी काली, माता खीवी सहो सोए, जिन गोए उठाली, होरे ओ गंग बहाई है, दुनियाई आखै के क्यों, नानक ईसर जगन्नाथ, उचहदी वैन बिरक्योन, माधाना पर्वत कर, नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन, चौदह रत्न निकालियन, कर आवा गौण चिलक्योन, उदरत ऐह वे खालियन, जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन, लहणे तरियन छत्र सिर, असमान

पान मेलो गुर का शब्द गुण की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरी कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेओ रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाऊ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

आई। जैसा मगहर तैसी कांसी, हम एक कर जानी। हम निर्धन ज्यो इहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिनल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन।

सो रन मैं जूझ बिन धागे भग जाई साधु होए सो भगत पछान हर लए खजान पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग

सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जाके पाए जगत सब लागे। सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे ब्राह्मण हर ना कहे। राम ना बोले पांडे दोजक पर है रहाव। अपनी ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है। चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है। तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है। तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया। ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी।

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

सो दीपक अमृत संसार, काम क्रोध बिख काडी ले मार। जेहे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन राख कंठ परोए। सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुर प्रसाद।

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुख तै गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पोंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मयासा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकतै बक शब्द सुनाया।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुरु होए लखाया राम कले कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाउ गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नाइय गोमती सहस गौदान कीजै कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले।

हिरण हुए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कौरव दास सब है नहीं समझस, भूल पर

जप एहन सुनाम हरे कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरे रहाउ हर हर नाम जप है आराध है सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाध नगर में है एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यो देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ।

दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन यारे पाथर भारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेव है तुम जन पगे।

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले ब्रह्म पीत मिले।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाऊ, वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिट है खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाऊ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीतो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आन न पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत न कबहू थोरी, नट महला पंजवा, मेरे मन जप जप हर नारायण, कबहू न बिसरहो मन मेरे ते, आठ पहर गुण गायन, रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल बिख पाप गवायन, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायन, जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल न लायन, दुइ कर जोड़ नानक दान मांगै, तेरे दासन दास दसायन, नट महला पंजवा, मेरा सर्बस नाम निदान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाओ, सुख दाता दुख भंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान।

दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण धनवाल, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। नाक

कीता, बिन सह दुख विपरीता, सब अर्पो मन तन चीत रहाव, कोई विरला आपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर भज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होहि पनीत, नानक दास बल बल कीत, नाटष्टपदियां महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम मेरे मन तन नाम आधारी, खिन पल रह ना सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम संभारी रहाव, हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारी, दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सुवारी, मधुसूदन जग जीवन माधु, मेरे ठाकुर अगम अपारी, एक बिनो बेनती करो गुर आगे, मैं साधु चरण पखारी, सहस नेतर नेतर है प्रभ कौ,

दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा घटक संहारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर उपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंचा।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी,

गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कड निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

का नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत।

हर शरण हर प्रभे आया, शरणागति प्रभ पालते, हर भगत वत्सल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकरियो,

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

नाम रस लागा कमल प्रगास भया गुर पाया हर जपयो भ्रम पौ भागा रहा पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा मन सोयो गुरमत जागा हिल बिख खीन भये शांत आई हर उर धार्यो वड भागा मनमुख रंग कसुंभ है कचुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मह बिन सजाए परतापै दंड धर्म राई का लागा सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी ज्यो रंग मजीठ बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग नाल है सुभागा हर चारे हो रंग मिलै गुर सोभा हर रंग चलू लै रंगा जन नानक तिनके चरण पखारै जो हर चरनी जन लागा माली घोड़ा महला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला मेरा मन तन लीन भया राम नामै मत गुरमत राम रसाला रहाउ गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिय हर जप माला जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जान हूं हर मात पिता प्रतपाला कर माया अगन नित मेल ते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द ने।

हर भज सब किल बिख काट, हर हर उर तारियो गुर पूरै, मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाऊ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कट काट, हर साजन मेलियो गुर पूरै, गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर पराग दान बहु किया, शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त ना पावे, बहु कंचन दीजै कट काट। हर कीरत गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पौ भागा, लजपानी मटकी माट। कलयुग गुर पूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक ले।

सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल विकार तज सब

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवां मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल।

सलाही है, जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा, इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े, नानक भी संजोग मारू महला पहला, मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करता लेख लिखाया, लिख दात जोत वड़ियाई, मिल माया सुरत गवाई, मूर्ख मन काहे कर सहमाना, उठ चलना खसमै भाणा रहाउ, तज साध सहज सुख होई, घर छड़ने रह ना कोई, किस खाजै किस धर जाइयै, जे बहुड़ दुनिया आइयै, सज काया पट हंडाई, फरमाइश बहुत चलाई, कर सेज सुखाली सोवै, हत्थी पौंदी काहे रोवै, घर घुमण वाली पाई

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहे लेख पए ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिया तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर होवै।

पहला बिमल मुझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच है एक

पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठ सठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

मेरा नाऊ सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का।

जाई, ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई। इस धन की देखो वडियाई, सहजे माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किन परम गत पाई। भणत नानक अकथ की।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नान

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने प्रांति।

गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वडभागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाए आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनाह बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विचो आप गुआए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

आनंदिन त्याई हर नाओ सतगुर कै बचन अराद तू आन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय सुमाणी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम सुमाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईऐ कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

साग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े जप हर हर नाम छुड़ावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचा हर देव पसाऊ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो नवे सिदर सर्व है अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जियो माया मोह भिकम है पारी क्यों तरिए दुत्तर संसारी सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लगावे जियो।

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेव

सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी एह कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारु महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी

पतत किए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सलिबलाई मारू महला पंजवा जो समरथ सर्ब गुण नायक तिसको कभू ना

सुनत भव तरी त्यो रंग न लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव।

भ्रम छूटा जो प्रभ पय सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी टेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग तार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निह चल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी।

भोग तपत थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदे निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ।

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई। जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मन।

परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा। मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवे है तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाउ। रूप रंग खुशियां मन पूरी।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार उत्पाती किया दिनस सब राती वन त्रिण त्रिभवन पानी चार वेद चारे खानी खंड दी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकी, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिठिया बन ते जियो उधारू।

मूढ़ अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, तृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगौरी आप पलायो, नानक किरत ना जाए मटायो, पास पंखी

उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई तां की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को

गर्भदारण जिस भावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई पीटे संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतुल।

सगल तिहानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाऊ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उचारण।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुरागियो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे।

सो भर गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

छह सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे।

साच पठायो लेख मुख तमाण तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजै को नहीं मन तन पूरण दे।

चलना मुख अमृत नाम मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जम

खार समुंदर कंडो लिया एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी।

थीयै पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतियां।

पिंड करे अंतर गर्भ उर्ध लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया शिव शक्ति घर वास धरी।

है, एते उत ढूंढत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे, खावे भोगे सुन सुन देखे, पहर दिखावे काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाणे, बिन हर नाम ना काल करे, जेता मोह हम मैं कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे, तन धन बिन सह सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद पया जो बन तन खिसिया, कप कंठ बुरू दोह नैनो नीर धरे, चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम नारिदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले, किसे न पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार समारे नरक खरे, पूरब जन्म को लेख न मितई, जन्म मरे का कहो दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पय रस भोगण, फोकट कर्म विकार करे, नाम बसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावह, जा को हर प्रभ नदर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुरु गोविंद हरे, हर सिमर हो गुर बचन समारोह, संगत हर जन पाव करे।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर के

जन सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी दियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

बंधप अंतरजामी जान रहाव संसार सागर जिन उपायु शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभु आरादी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखनहार दुख दर्द कलेश बिनसह जिस बसह मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह। सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करहें ओचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार। अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान, पाम नाते महापावन कोट दान इशनान। बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास, बिसर नाही

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है।

मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाए चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ किरपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत किरपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोए पीवना मारू महला।

एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भो मन माही, इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहारे लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर

ए देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई हे आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

त्रिवेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अगली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई है। आपे काजी आपे मुन्ना आप अपुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया पतदाता ना किसै को बहराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सहदाता तिल ना तमाई पर पुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार।

जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईए साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत का

ब्राह्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर,

खेल तमाशा तुंडू कारी, बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यो निस सुपन पखलाई है, तिनको तख्त मिली बड़ियाई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी, त्रे भवन ताड़ी लाई है, साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त बढ़ाई, हम मैं गणत गवाई है, गणत गणिये सहसा जीए, क्यों सुख पावे दुए तीए, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपूरे ते पत पाई है, जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई है, जीवर सायन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है, रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देह तू है मन भाव है।

ठाके कर मुख माई हे कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ शब्द सलाही बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई परपंच कर परमाई हे माया ममता छोड़ी ना जाई से छूटे सचकार कमाई अहनस भगत रते विचारी ठाकुर स्यों बन आई हे एक जप तप कर कर तीरथ नावह ज्यों तुद भावै तिवै चलावह हठ निग्रह अपतीज न पीजै बिन हर गुर किन पत पाई हे कली काल मह एक कल राखी बिन गुर पूरे किन ना पाखी

गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिल

करह पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल होय रह भगत लिवला।

देखो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई है ओह निर्मल है ना ही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह।

प्रड़ कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे, सर

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे न कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवारा ही गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर मह रतन लाल बहुसारी मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाह अगाध निराला हर अंत न पाइए गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तार नहारा मेल लए रंग लीना है सतगुर बाजहु।

मुक्त कराई, सब रोग गवाए अमृत रस पाई, जम जगात नाही कर लागे, जिस अग्न बुझी ठर सीनाई, काया हंस प्रीत बहुतारी, ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी, अहनस भोगै चोज बिनोदी, उठ चलतै मता ना की नाही, सृष्ट उपाय रहे प्रभ साजै, पौन पानी बह संतर गाजै, मनुआ डोलै दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाही, नाम विसार दोख दुख सही है, हुक्म भया चलना क्यों रही है, नरक कूप मह गोते खावे, ज्यों जलते बाहर मीना है, चौरासी ही नरक साकत पोगाई है, जैसा की कहते सो पाई है, सतगुर बाजो हो मुक्त ना हुई, किरत बांधा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यो पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की नाही, मीत सखे केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छदाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जमदारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह

अगन बिख झाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा बुरिया राही मस्तक भार कलर सिर पारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जप हो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई ना गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल ना पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुगदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रिहो गुण अंत।

राम जपो अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचो अपरंपर यूं पावहु मुक्त द्वारा ही जिस बिसरै जम जोहन लागै सब सुख जाहे दुखा फुन आगै राम नाम जप गुरमुख जी अड़े।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत विचारहु हर लिव लावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

मूढ़ कपट महती का अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरया हम मैं करता पवजल परया।

पेड़ न आवे मनसु प्रभे अपरे अपाराही गुरते पूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकाराही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया कराराही हम मैं ममता कर दायाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने

सब कट भोगे हर रस पीवन, आपे लेवे आपे देवे, तिहु लोई जगत पित दाता ही, जगत अपाए

अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला साकत दुर्मत डूबह दाजह गुर राखे हर लिवराता ही अप तेज वाए पृथ्वी अकासा तिन मह पंच तत् घर वासा सतगुर शब्द रह रंग राता तज माया हो मैं प्रांता ही इह मन पीजै शब्द पतीजै बिन नावै क्या टेक टकीजै अंतर चोर मोह घर मंदर इन साकत दूत ना जाता ही दुंदर दूत पूत पीहाले खिंचो तान करह बेताले शब्द सुरत बिन आवै जावै

आही साकत फांसी पड़े अकेला जमवस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे आज काल पच जाता ही सतगुर बाज ना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव है कर कृपा यूं सलले सरल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग।

कहो क्यों लखिए जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर।

अंत ना जानी जहां को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाए जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

नाम काटे अंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफ्त सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे नानक साच मिले पत राखो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर।

वह वस्त संभाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोलाईंदा पीतर कोट गुफा कर जाई।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एकंकार वसै मन भावै।

जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निहचो होवे मनमुख आप गणाई रोवे नाम भुला ठौर।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप ना रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद।

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन

जात ना जन्मा ना को दुख सुख पाएंदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाएंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुर ते सूझी हुई, नानक साचर

किसै बुझाईंदा नदर करे पूरा गुर पीटै जम जंदार न मारै फेटै ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याईंदा आपे वरखै अमृत धारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ।

सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोह किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण ताकी कीमत कह ना सकै को त्यों बोले ज्यों बुलाएंदा सुनो सपत पाताल पाए सुनो पवन रखे लिबन।

सुनो उपजे दास अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाएंदा, गुरमुख समझै रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्त कलीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मतवाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा, इस मन माया को नेहो कनेरा,

शब्द अति शीतल सहज भाई निवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी।

संगत कुल तार है इन सफल जन्म जाग आया घर दर मंदर जान सोई जिस पूरे गुरते सोजी होई काया गढ़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतर दस हाट दीवे दोए साखी सेवक पंच नाही बिख चाखी अंतर वसत अनूप निर्मोलक गुर मिले हर धन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जगादी है पी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती एहो साच वडाई गुरमत लिव जाती।

संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई। तस्कर चोर न लागे ताको, धुन उपजै शब्द जगाया। तू एक अंकार नरानम राजा, तू आप सवार है जन के काजा। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थर तान सुहाया। देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसह परदान।

सिर सिर करन हारे साजी दसवें पुरख अतीत नराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना।

कैल निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार नरालम प्रभ आपे वाहे।

जन राया दुख भय भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाणे आपे जाने आप पछाणे सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी घट घट रब रहया बनवारी।

कुल निरंजन गाया हो मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हो मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै। तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो। कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा। सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया।

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए अनुभव पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ भंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी है अंतर की दुबदा अंतर जरी है पांच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आईय जाइय नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजै गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जान सो निरभो गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरै दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नावहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै, आसा माहि निरास रहीजै, संसार दुख बनासन सेवहु, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे पावै तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुरु पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हों मैं, पाखंड कीने जोग ना पाईए, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईए, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा लिबलागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किन पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

बहु भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे।

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटाम्ब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हो मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मन मुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाउ ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझै।

आपे पाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेवह से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेख, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हूं मैं माया मैल कमाया, मर मर जम्मै दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो लिवलाई है। जोत सुभावै सोई करसी, आप हो आ ना किस होसी, ना

सुख पाया सहजी साच समाई ही तंदै तावत मन पया मनूरा फिर हुए कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई ही दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है अवगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख दिन गुर बूझ ना पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जाय आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया, सच्चा नाम निवासी है। ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूजै, चीने शब्द अबनासी है। काम क्रोध भरे हमें अपराधी, क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा सादी।

मन पीजै ही माया लहर शब्द निवारी इहु मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता।

सदा सुख पाया। नाए साक्या अमृत पी जाहि तिल बिख दुख निवारण हारा। गुरमुख सेविया शब्द विचारा सब किस आपे आप वरतै। गुरमुख तन मन पी जाहि माया अग्न जलै संसारी। गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया। गुरमति नाम ली जाहि इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पहु पाव है। जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है। सतगुर भेटै तां मुक्त पाई हर हर रसना पी जाहि। मन मुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

परछन्न सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस पावे।

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखह रहना गुरमुख एको जाता ही जात पाणा ता सच्ची कारै लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सहलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सद।

तीजा आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरना आपे गुपत वरतै सब अंतर गुर कै शब्द पछाता ही हर के भगत परे भंडारा।

रतने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाताई जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एको जाताई माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सुबाया ज्योत दुपाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप पुन वरतै संसारा हरख सोग सब दुख है पारा गुरमुख होवै सो सुख पाई।

पाई, रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता ही, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम यथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई, एक

लाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जाण है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाही, आपे साजे सिरत अपाई, बिरले कहो गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

सतगुर सेवन से वड भागी अन दिन साच नाम लिव लागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसिया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते मन मुख का क्या विसाहाई से मन मुख जो शब्द ना पछाण है गुर के पै की सार ना जान है पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है जम काड लएगा साहाई अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई शब्द सुने ता दूर हो भागै मत

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो निवलाई, हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक जन नाम सलाहि बिगसै, सो नाम बेपरवाहाई, मारू महला तीजा, हर जियो सेवे हो अगम अपारा, तिसदा अंत न पाईऐ पारा वारा, गुर प्रसाद रविया घट अंतर, तित घट

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा,

पाई, बिन गुरदाते कोई ना पाई, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते घट अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहाई, से जन मिले तुर आप मलाई, साची बाणी शब्द सुहाई, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाई, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याएन, गुरमत सील सनाहाई, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसिया घट अंतर, छोड़िया माया का लाहाई, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याएन सदा सुख पाएन, निश्चल राजत नाहाई, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसे ते होई, गुरमुख साचा।

सील संतोख सब ताहाई, हम मैं मोह उपजै संसारा, सब जग बिन सै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईऐ, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिल वाजा वाया, सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्द कारज के हाही, खिन मह हसै खिन मह रोवै,

दुख भारी बिस्ता माहे समाहाय वेद पढ़े पढ़ बाद बखाण है काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण।

हन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल ना ताहाई मनमुख देही परम पतारू दुर्मत मरै।

बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी सच्च

दुख पाए, मन ही मन है समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे।